डेमिरजी इस मौजू पर आलमी इदारा सेहत के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहते हैं, अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल छाती, जिगर और निजाम इन्हिजाम के कैंसर समेत बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। प्रोसेस्ड यानी मस्नूई तौर पर महफूज की गई गिजाओं पर तवज्जो दें। प्रोसेस्ड गिजाओं के कैंसर का खतरा बढ़ाने की तरफ मुतवज्जो करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी ये अहम वार्निंग देते हैं। सुजुक यानी तुर्क सॉसेज, सलामी और सॉसेज जैसी प्रोसेस्ड गोश्त की मसनूआत को भी आलमी इदारे सेहत ने कैंसर का बायस बनने वाले बुनियादी अनासर की फहरिस्त में रखा है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड गिजाएँ खासतौर पर खुराक की नाली और मेदे के कैंसर समेत पूरे निज़ाम इन्हिज़ाम में कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी ने याद दिलाया कि सूरज की शुआएं खासतौर पर गर्मियों के महीनों में जिल्द के कैंसर का खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन घंटों में जब धूप सबसे तेज और सीधी होती है, ज्यादा देर तक धूप में रहने से गुरेज करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी का कहना है कि बीमारी के खिलाफ जंग में बाकायदा चेकअप की भी बहुत ज्यादा अहमियत है और खास तौर पर खतरे के दायरे में आने वाले अफराद को अपने टेस्ट मौखर नहीं करने चाहिए। तुर्की में छाती, बड़ी आंत और रहम के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रोग्रामों के फैलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दर्ज ज़ेल बातों का जिक्र किया। कैंसर की बरवक्त तशखीस, स्क्रीनिंग और तालीमी मराकज हमारे मुल्क के तकरीबन हर जिले में मौजूद हैं। उन मराकज से रुजू करना जरूरी है। जब हम वहां जाते हैं तो स्क्रीनिंग के तरीकों से कैंसर की तशखीस बहुत इब्तदाई मरहले में हो जाती है। बरवक्त तशखीस जान बचाती है का नारा 100% सच है, क्योंकि हमारे मरीजों का जिंदा रहना इस बात पर मुनहसर होता है कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनकी बीमारी किस स्टेज पर है। तो किस शख्स को किस किस्म के कैंसर के लिए और कितने अरसे बाद चेकअप करवाना चाहिए, इस सवाल पर प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी का जवाब सबके लिए एक संजीदा तनबीह की हैसियत रखता है। खवातीन में 40 साल की उम्र के बाद साल में एक या दो बार मैमोग्राफी होनी चाहिए। मैमोग्राफी तिब्बी प्रैक्टिस में कैंसर से होने वाली अमवात को कम करने वाला सबसे अहम स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके जरिए हम इब्तदाई तशखीस कर सकते हैं। इसी तरह रहम के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर करवाई जाने वाली स्क्रीनिंग है। बड़ी आंत के कैंसर के लिए 50 साल की उम्र के बाद हर 10 साल बाद एक बार कोलोनोस्कोपी यानी पूरी बड़ी आंत का मुआयना या हर 5 साल बाद बड़ी आंत के इब्तदाई हिस्से तक का मुआयना काफी है। इस उम्र के ग्रुप में फुजले में छुपे हुए खून का टेस्ट भी बाकायदगी से किया जा सकता है। इब्तदाई मरहले में इलाज की कामयाबी का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि कैंसर के इलाज में खास तौर पर हालिया सालों में अहम पेशरफ्त हुई है, प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी कहते हैं कि इब्तदाई मराहिल में कामयाबी की शरह काफी हद तक बढ़ गई है। फेफड़ों के आखिरी स्टेज के कैंसर में 2010 में 5 साल मुकम्मल होने पर सिर्फ 4% मरीज जिंदा बचते थे, जबकि आज इम्यूनोथेरेपी की बदौलत मरीजों के एक मखसूस ग्रुप में ये शरह 30-35% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 3 में से एक मरीज 5 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है। जड़ी बूटियों वाली मसनूआत इलाज पर मनफी असर डाल सकती हैं। कैंसर का इलाज एक तवील और मुश्किल अमल है। इस अमल के दौरान कुछ मरीज जड़ी बूटियों की मसनूआत की तरफ माइल हो जाते हैं। ताहम आम तासुर के बरअक्स ये सूरत हाल इलाज के अमल को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी इस मामले की वजाहत यूं करते हैं। कैंसर की तशखीस पाने वाले हमारे बहुत से मरीज नेक नियति के साथ जड़ी बूटियों की मसनूआत की तरफ रागिब होते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो कुदरती हो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती। उसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। अगर आप पानी की मकदार हद से ज्यादा बढ़ा दें तो वो पानी की मसमूमियत से इंसान को मार सकता है। लिहाजा किसी चीज का कुदरती होना खुद ब खुद ये माने नहीं रखता कि वो इंसानी सेहत को फायदा पहुंचाएगी। इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसा कोई मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि जड़ी बूटियों की मसनूआत कैंसर का इलाज करती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर डेमिरजी बताते हैं कि कुछ मसनूआत सिर्फ इलाज की वजह से होने वाले ज़ेली असरात को कम कर सकती हैं। वो कहते हैं कि असल खतरा उस वक्त पैदा होता है जब ये मसनूआत डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल की जाए।
اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے مریضوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور مریض کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ محفوظ اور سائنسی بنیادوں پر ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمیر جی نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ بغیر کنٹرول کے استعمال کی جانے والی ہربل مصنوعات سنگین سائڈ افیکٹس کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ علاج کے عمل کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ان ادویات کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو ہمیں عام طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں، حالانکہ ہم اپنے جدید علاج میں امیونو تھراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ امیونو تھراپی ایسی ادویات ہیں جو مدافعت کے نظام کو مضبوط بنا کر کینسر کے خلیات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف سے جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو دبا دیں گے تو بدقسمتی سے ان ادویات کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے طریقے موجود ہیں اور یہ طریقے بالکل واضح ہیں۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ چیک اپ اور باشعور رویے جان بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بر وقت تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صحت مند رہیے۔

0: Vahil senin program ki ağız mı xas xas xadron ka xulasa samat firmalice.
1: Türkiye के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम फलस्तीनी रियासत के कायम के लिए पुरअज़म जद्दोजहद जारी रखेंगे।
0: तुर्की के वजीर खारजा खाकान फिदान ने लीबिया के अपने अहम दौरे को मुकम्मल कर लिया है।
1: पाकिस्तान और नॉर्वे के वज़राए खारजा ने आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुलाकात की है।
0: पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने जंग बंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इतफाक कर लिया है।
1: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका और इसराइल को $10 खरब का माहौलियाती जुर्माना अदा करना चाहिए।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए पुरअज़म जद्दोजहद जारी रखेंगे। इत्तला के मुताबिक सदर एर्दोआन ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के साथ तुर्की की हिमायत का इरादा किया है। सदर अब्बास ने भी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इंतहाई अहम करार दिया है। वाज़ेह रहे कि सदर एर्दोआन ने बुध के रोज़ अंकरा में सदर अब्बास के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तुर्की मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के दारुल हुकूमत वाली और 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और जुग्राफियाई तौर पर मरबूत फलस्तीनी रियासत के लिए पुरअज़म शक्ल में काम जारी रखेगा।
0: तुर्की के वजीर खारजा खाकान फिदान ने लीबिया के अपने अहम दौरे को मुकम्मल कर लिया है। त्राबलुस और बेंगाज़ी में आला सतही मुलाकातें करने वाले वजीर खारजा फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की

0: कामयाबियों की तारीफ की और कहा कि यह तआवुन मजीद बढ़ता रहेगा। वजीर खारजा लीबिया के दौरे के बाद इलाकाई मामलात और फलस्तीन के मसले पर बातचीत के लिए मिस्र रवाना हो गए।
1: पाकिस्तान और नॉर्वे के वज़राए खारजा ने आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तय पाने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ बैनुल अक्वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक नॉर्वे की वजीर खारजा एस्पिन बार्थ हाइडे अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। यह दौरा गुज़श्ता एक तिहाई में पाकिस्तान और नॉर्वे के माबैन आला तरीन सतह का दौरा है। बयान में कहा गया है कि दोनों वज़रा ने दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लेने के अलावा इलाकाई और बैनुल अक्वामी उमूर पर गुफ्तगू की और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। साकदार ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा है कि इनका मुल्क मुख्तलिफ शोबों में नार्वे के साथ दोतरफा ताल्लुकात और तआवुन को मजीद वसअत देना चाहता है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि नार्वे की तरक्की में 60,000 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी बरादरी अहम किरदार अदा कर रही है। जवाब में नार्वे के वजीर खारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद के सालिसाना किरदार की तारीफ की। उन्होंने मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल को आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए पाकिस्तान की क्यादत में की जाने वाली सालिसाना कोशिशों का हवाला दिया और कहा है कि ये दुनिया के लिए एक हकीकी खिदमत है।
0: पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने जंग बंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए ने बुध को जारी करदा बयान में ऐलान किया है कि मौजूदा माहदे की मियाद 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है, लिहाजा अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की सालसी में जंग बंदी में 60 रोज़ा तौसी पर इतफाक़ कर लिया है। सालसी के अमल से वाकिफ ज़राए ने कहा है कि दोनों फरीक़ैन ने फायरबंदी की मियाद में इजाफे के लिए सालसों को रजामंदी दे दी है। ताहम दुरुस्त तौसी मियाद का फैसला कर सकने के लिए दोनों फरीक़ैन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है।
1: ईरान ने ऐलान किया है कि अमरीका और इसराइल को 10 खरब डॉलर का मौलियाती जुर्माना अदा करना चाहिए। तेहरान इंतजामिया ने खलीज फारस और बहरा ओमान में फौजी कार्रवाइयों और साल साल से जारी समुद्री आलूदगी के बायस होने वाले मौलियाती नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ईरान वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने जजीरा कशम के साहिलों पर तेल के बहाव से होने वाली हालिया आलूदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये खत्े में होने वाली बड़े पैमाने की मौलियाती तबाही का महज एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खत्ते के हयातियाती निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है और ईरानी साहलों पर ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बकाई ने आबनाए हुरमस और इसके गिरदोनवाह को फौजी कार्रवाइयों का मैदान बनाने वाले ममालिक की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि तजारती जहाजरानी और सस्ती तवानाई से फायदा उठाने वाले तमाम फरीकैन को इस माहौलियाती नुकसान की तलाफी करनी चाहिए।
0: फ्रांस और दीगर 25 ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आला बराए खारजा उमूर और सलामती पॉलिसी ने ईरान के मुजाहिरीन को सजाए मौत देना जारी रखने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। फ्रांस की वजारत खारजा ने बरोज़बुध जारी करदा बयान में कहा कि मुखालफीन को खामोश कराने, शहरियों में खौफ व हरास पैदा करने और अपने बुनियादी हकूक के इस्तेमाल पर अफराद को सजाए मौत देने को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। बयान पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने जोर दिया है कि ईरानी अवाम को बगैर किसी खौफ के आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हक का इस्तेमाल करने के काबिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम ईरानी हुकूमत से सजाए मौत पर अमल दरामद को फौरी तौर पर बंद करने और मनमानी शक्ल में हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा करने का मुतालबा करते हैं। बयान में ईरान से ये मुतालबा भी किया गया है कि वह तब्दीली का मुतालबा करती अवाम की आवाज़ सुने और इंसानी हकूक के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम करे। इस बयान पर फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्पेन, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्वीडन और बरतानिया समेत दीगर 25 ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आला बराए खारजा उमूर और सलामती पॉलिसी काया कलास ने भी दस्तखत किए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इंसानी हकूक और बैन अल-अक़वामी कानून से मुतालिक इन बयान पर मजकूरा ममालिक को मुनाफिकत का कसूरवार ठहराया और एक्स जारी करदा बयान में कहा है कि फ्रांस जैसे ममालिक को दुनिया को इंसानी हकूक और बैन अल-अक़वामी कानून के दर्ज देना बंद कर देना चाहिए। मुनाफिकत बिल्कुल वाज़े और शर्मनाक है। इसराइल की तरफ से गजा में जारी नस्ल कुशी की हिमायत और ईरान के खिलाफ आपकी जारहियत ने आपके अपने बारे में हर किस्म के इखलाकी बर्तरी के गुरूर को ख़त्म कर दिया है।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के फजाई हमलों में लुबनानी सरहद के जनूबी हिस्से में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के दौरान वजीर दिफा कॉट्स ने इसराइली अफवाज को लुबनान, शाम और गजा के मकबूजा इलाकों में बरकरार रखने का वाज़ेह अहद किया है। اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارتس

लोगों में तबाही मचाने वाली एबोला की यह वबा तारीख की सबसे मोहलक तरीन वबा बनने जा रही है। फरवरी से फैलने वाली और मई में बाकायदा तौर पर करार दी जाने वाली इस वबा में मरीजों की तादाद 4,300 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 2,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि अगर यह वबा इसी मौजूदा रफ्तार से जारी रही तो यह 2014 तथा 2016 की उस वबा को भी पीछे छोड़ सकती है, जिसमें 11,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। बताया गया है कि खत्ते में जारी झड़पों और तनाज़ात की वजह से सिर्फ 30% मरीजों तक ही रसाई मुमकिन हो रही है, और इस वबा का बायस बनने वाली नायाब तरीन किस्म बुंडी बोगियों के खिलाफ अब तक कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है। जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक तजुर्बाती वैक्सीन के तिब्बी तजुर्बा शुरू कर दिए हैं, वहीं आलमी इदारा सेहत का हदफ है कि अगले 3 महीनों के अंदर इस वबा पर काबू पा लिया जाएगा। इसके साथ ही सदाए तुर्कियत से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।